एक तरफ विकास की ऊंचाइयां हैं तो दूसरी तरफ पिछड़ेपन की। इस तरह से इंसान का चरित्र जानवरों से भी नीचे दर्जे वाला बन गया है। महापुरुष समझते हैं कि तू इंसानी चाल तो चल ले, फिर तेरे आगे बढ़ना, विकास करना सब

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: ओ सिग्नापुर का वासी है

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज के कलाकार हैं पार्श्व गायक हेम लता जी। पेश करेंगे RJ किरनी।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे खास रेडियो प्रोग्राम सुनहरे पल में, जहां हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी गायिका से जिन्होंने अपने शुरू से हमारे दिलों को छू लिया है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गायिका के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज और गानों से सभी को अपना दीवाना बना लिया है। आज हमारे सिंगर है हेमलता जी। हेमलता भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण पार्श्व गायिका है। 1970 के दशक के अंत से बॉलीवुड में एक प्रमुख पार्श्व गायिका रही है। वह शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित थी। उन्होंने खुद को फिल्म, संगीत गोष्ठी, टेलीविजन और संगीत में स्थापित किया है। हिंदुस्तान की एक महान कलाकार बेबी लता से बनी हेमलता। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उनकी मधुर मखमली आवाज से सभी पर जादू बिखेरने वाले पार्श्व गायिका हेमलता जी की। भारतीय सिनेमा में उनके अनूठे गीत उन्हें अन्य गायिकाओं से अलग पहचान दिलाते हैं। उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।

हेमलता जी का जन्म हुआ 16 अगस्त 1954 हैदराबाद में, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के चुरू जिले के सेहला गांव का निवासी है। उनका असली नाम लता भट्ट है, लेकिन फिल्म जगत ने उन्हें नाम दिया हेमलता। हेमलता जी को बचपन से ही गायकी पसंद थी, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि वह हेमलता को संगीत के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहते थे। उनका परिवार रूढ़वादी संस्कृति में डूबा हुआ था और पूरी तरह से हेमलता जी के संगीत सीखने के खिलाफ था। परिवार में संगीत का माहौल भरपूर था। पिताजी भी शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन ये संगीत बेटियों के लिए नहीं था। शायद ये इनके संघर्ष का सबसे कठिन दौर था। इनका ये संघर्ष आगे भी रहा।

बचपन में हेमलता दुर्गा पूजा में होने वाले संगीत के कार्यक्रमों में छुप छुप कर गाया करती थी। वह परिवार का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, वह परिवार के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर खुद को गाने से रोक नहीं पाती थी। बचपन के इस छोटी उम्र में ही लता जी, किशोर कुमार, हेमंत दा आदि दिग्गज कलाकारों के साथ स्टेज पर गाने इन्होंने गाए। लोगों ने हेमलता को काफी पसंद किया। इन दिग्गज कलाकारों के साथ गाने के दौरान उनके आवाज का जादू कुछ ऐसा चला कि लोगों ने इनका नामकरण कर दिया। फलस्वरूप हेमलता बेबी लता के नाम से मशहूर हो गई।

हेमलता जी की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना संगीतकार नौशाद साहब ने। नौशाद पहले संगीत निर्देशक थे जिन्होंने उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया कि हेमलता लगातार 5 साल तक मेरे लिए गाएगी, साथ ही साथ मैं हेमलता को संगीत का प्रशिक्षण भी दूंगा। ये बात फिल्म जगत में आग की तरह फैल गई और उनके घर पर बड़े बड़े संगीतकारों का तांता लगने लगा। सब बेबी लता को अपनी फिल्म में गवाना चाहते थे, मगर 5 साल का लंबा इंतजार और इधर फिल्मों में तुरंत गाने का ऑफर, आखिर नौशाद साहब के साथ किया गया उनका अनुबंध टूट गया और उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपया में इन्होंने अपना पहला गाना गाया। उस समय इनकी उम्र महज थी 13 साल। जिस दिन बेबी लता उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपया में गाना गाया, उसी दिन इन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए अपना दूसरा गाना ले चल मेरे जीवन साथी मुकेश जी के साथ गाया। उसके पहले एसडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी, चित्रगुप्त एक से बढ़कर एक गीतकार के साथ काम किया। बेबी लता हेमलता के नाम से इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने लगी।

इस बीच इनके प्रति राजनीति का सिलसिला भी शुरू हुआ। वह उस दौर के अपना सिक्का जमा रही थी जब संगीत जगत में बड़े बड़े नाम स्थापित हो चुके थे। इसके लिए उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भी हेमलता ने अपने अनूठी आवाज की गुणवत्ता पर खुद को स्थापित किया। राजश्री प्रोडक्शन के साथ उनका बहुत बड़ा जुड़ाव था। उन्होंने 80 और 90 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन की विभिन्न फिल्मों में कई गाने गाए। गाना कौन दिशा में लेकर चला गया, ये गाना उनके जीवन में एक और मील का पत्थर साबित हुआ।

इन फिल्मों के बाद ही हेमलता को लता जी के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। रविंदर जैन के सहयोग से उन्होंने भारतीय शास्त्रों पर आधारित अधिकांश फिल्मों के लिए व्यापक रूप से गाया। रामायण चौपाइयां, कबीर दोहा, सुंदरकांड और विभिन्न भक्ति गीतों को उन्होंने गाया। इसके अलावा उन्होंने रामानंद सागर की टीवी सीरियल रामायण के लिए अपनी आवाज दी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, एक सीरियल में वो अभिनय भी करती नजर आई। वह एक एपिसोड में पारंपरिक मेरा भजन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो गीत नजर आये।

हेमलता जी ने कई भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गाए। 38 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। करीब 3 दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक नायाब नगमे दिए। पाकिस्तानी गायक अताउल्लाह खान के साथ उन्होंने 3 एल्बम के लिए गाने गाए, परंतु इनमें से 2 एल्बम ही रिलीज हुए। हेमलता जी 1999 में फिल्मी दुनिया को बाय बाय कह गई। बॉलीवुड से विदाई लेकर वह मैक्सिको चली गई। वहां उन्होंने अपने म्यूजिक इंस्टीट्यूट के जरिए लोगों को संगीत सिखाने का काम करने लगी। 2015 में कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित उनका गाना माँ मुझे आने दे चर्चा में रहा। वह एकमात्र भारतीय फिल्म पार्श्व गायिका है जिसने अमेरिका जैसे देश में एक संगीत अकेडमी शुरू की। उनकी अकेडमी भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत के प्रचार और प्रसार के साथ साथ हॉलीवुड, लॉस एंजलिस से लेकर पूरी दुनिया में संगीत का प्रचार प्रसार कर रही है। आशा है कि हमारे श्रोता भी इस संगीतमय यात्रा का पूरा आनंद उठा रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया जो आपने हमें अपना समय दिया और हेमलता जी के गीतों का रसवाद किया। हेमलता जी, आपके मधुर स्वर हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हमें अपने गीतों से सुखद अनुभव देते रहेंगी। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2, प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। आज के कलाकार थे पार्श्व गायक हेमलता जी। रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेश

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। हम लेके आए हैं आपके लिए आज के कृषि समाचार।
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: कपास की बिजाई इसी महीने अंत तक पूरी कर लें। दीमक वाले खेत में करें बीज उपचार। खेत में परेवा के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 3 से 4 बार जुताई अवश्य करें। कपास की बिजाई मई के अंत तक पूरी कर लें। नरमा की उन्नत किस्मों तथा देसी कपास की सिफारिशशुदा किस्में ही बोएं। चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज के अनुसार पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार 3 से 4 जुताई करें। बिजाई से पहले खेत में अच्छा पलेवा करें। गीले बत्तर में 2 जुताइयां करके सुहाग लगाएं व खेत में पौधों की सही संख्या के लिए बीज की सही मात्रा प्रयोग में लाएं व बीज का उपचार करके ही बिजाई करें। जिन खेतों में कपास की बिजाई ना करके ज्वार या बाजरे की खेती करें या 2.0 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार अवश्य करें। जिन खेतों में पिछले वर्षों में दीमक का प्रकोप रहा है वहां प्रति किलोग्राम बीज के 10 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी व 10 मिलीलीटर पानी के घोल से उपचारित करें। ड्रिल मशीन से डालें यूरिया व जिंक सल्फेट। अमेरिकन कपास की बिजाई करते समय हिसार और सिरसा जिलों में जहां जमीन काफी रेतीली है 37 किलोग्राम यूरिया और 75 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ बिजाई के समय ड्रिल करें। यूरिया की शेष आधी मात्रा यानी 37 किलोग्राम बोकी आने पर डालें। सुपर फॉस्फेट हमेशा ड्रिल द्वारा डालनी चाहिए। कपास की देसी किस्मों के लिए फास्फोरस की मात्रा की सिफारिश तभी की जाती है जब मिट्टी परीक्षण में फास्फोरस की कमी हो। नरमा के लिए 8 से 10 किलो और देसी कपास के लिए 5 किलोग्राम बीज डालें। नरमे का रोयो सहित 6 से 8 किलोग्राम व रोयो युक्त 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। देसी कपास में 5 किलोग्राम बीज काफी रहता है। संकर किस्मों का रोए उतरा बीज 1.2 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। बीटी संकर किस्मों का 850 ग्राम बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोएं। बिजाई के दौरान कतार की दूरी 100 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। नरमा की मुख्य किस्में एच 1226, एच 1098, संशोधित संकर किस्में एचएचएच 223, एचएचएच 287, देसी कपास की एचडी 123, एचडी 324 व एचडी 432 तथा संकर देसी की एएएच 1 प्रमुख है। बीटी व संकर किस्मों को 67.5 से 60 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों या कतार की दूरी 100 सेंटीमीटर व पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। अन्य किस्मों में दूरी 67.5 सेंटीमीटर व पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। मेड़ों व खालों से खरपतवार नष्ट कर दें। खरपतवार नियंत्रण के बिजाई के तुरंत बाद पेंडीमेथिलीन की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मिलीबग के नियंत्रण के लिए बंजर भूमि पर व खेती के आसपास मेड़ों, खालों और रास्तों आदि पर उगने वाली खरपतवारों जैसे गाजर घास, कंगी बूटी और कपास की पिछली फसल के ठूंठों से आगे वाले पौधों को नष्ट करें।
1: किसान बागवानी फसलों की आधुनिक आईपीएम तकनीक से कीटों से करे सुरक्षा, कम लागत में मिलेगी बंपर पैदावार। आईपीएम अपनाने से खर्च में आती है कमी और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। किसानों को अक्सर बागवानी फसलों को बचाने के लिए महंगे हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों का सहारा लेना पड़ता है, पर इनके बजाय समेकित कीट प्रबंधन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM अपनाने से रसायनों पर निर्भरता कम होती है, इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है व फसल में जहर का अंश नहीं रहता। रसायनों का खर्च बचाने से खेती की लागत कम होती है। IPM कोई एक दावा नहीं, बल्कि कीटों को नियंत्रित करने का एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिसमें रसायनों के बजाय भौतिक और यांत्रिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर कमल सैनी DHO करनाल के अनुसार इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य कीटों के प्रजनन चक्र को तोड़ना है, ताकि वे फसल को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति तक पहुंच ही ना सकें। फसलों में कीट नियंत्रण के 3 प्रमुख हथियार। पहला, फेरोमोन ट्रैप। यह तकनीक कीटों के प्रजनन चक्र पर हमला करती है। इसमें विशेष लूअर का प्रयोग होता है जो विशेष गंध छोड़ता है और नर कीटों को आकर्षित करती है और उन्हें जाल में फंसा लेती है। उपयोग, अमरूद, आम, पपीता, चीकू की फसल में फल मक्खी की रोकथाम एवं टमाटर के फल छेदक कीट की रोकथाम में कारगर हैं। कद्दू वर्गीय फसलों जैसे लौकी, तुरई में यह बेहद कारगर है। प्रति एकड़ 8 से 10 ट्रैप लगाएं। दूसरा, स्टिकी ट्रैप। स्टिकी ट्रैप यह उड़ने वाले छोटे कीटों को चिपकाकर खत्म करने का सरल तरीका है। यह 2 रंगों में आते हैं, पीले ट्रैप सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई एफिड और जैसिड के लिए। विधि, इन्हें मिर्च और टमाटर जैसी फसलों में पौधों की ऊंचाई के बराबर लगाना चाहिए। तीसरा, LED लाइट ट्रैप। कई खतरनाक कीट रात के समय सक्रिय होते हैं, यह उपकरण रोशनी के जरिए उन्हें अपनी ओर खींचता है। किसानों के लिए अनुदान। प्रदेश सरकार एकीकृत बागवानी विकास IHD योजना के तहत किसानों को इन आधुनिक उपकरणों फेरोमोन, स्टिकी और LED ट्रैप की खरीद पर 75% तक का भारी अनुदान प्रदान कर रही है।
0: तरबूज की खेती में इस बार प्रति एकड़ 2 लाख तक हो रहा है मुनाफा, प्रति एकड़ 25 से 30 हजार रुपए तक का खर्च। गर्मी में तरबूज की मांग को देखते हुए सुनारिया की किसान जिले सिंह ने पिछले साल खेती शुरू की थी। अब की बार 5 एकड़ भूमि को इसकी खेती के लिए फरवरी माह में तैयार किया। प्रति एकड़ में 7 से 8 टन खाद डाली, 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बिजाई की। प्रति एकड़ 30 हजार रूपए का खर्च आया। अब ये फसल लहलहा गई है। बाजार में तरबूज की भारी मांग होने के कारण हाथों हाथ बिक रहा है। इससे करीब 2 लाख रूपए प्रति एकड़ की इनकम हुई है। इस फसल में खासियत ये है कि फल आने के दौरान रोग लगने का उतना खतरा नहीं होता, क्योंकि गर्मी में शत्रु कीट उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए मेहनत व लागत कम हो जाती है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जगत बताते हैं कि लू चलने के समय रोग उत्पन्न करने वाले शत्रु कीट गर्म हवा से नष्ट हो जाते हैं। ये थे आज के कृषि समाचार। उम्मीद करते हैं कि इन कृषि समाचारों से आपको लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, उन्नत रहिए।
1: मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन। सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन। और मिला दो 7056413010 पर फोन।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: एक बार एक राजा के 3 पुत्र थे। राजा ये जानना चाहता था कि उसका कौन सा पुत्र अधिक बुद्धिमान है, मुश्किल हालातों में कौन सबसे अधिक सकारात्मक सोच अपनाता है। राजा ने तीनों पुत्रों को एक एक सिक्का देकर कहा कि इस सिक्के से कुछ ऐसा खरीदो जिससे तुम्हारे कक्ष का कोना कोना भर जाए। रात को मैं तुम तीनों के कमरों का निरीक्षण करूंगा। बड़े राजकुमार को लगता था कि 1 रुपए से ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए, इसलिए वो कुछ भी खरीद नहीं पाया। दूसरे राजकुमार ने थोड़ी बुद्धि लगाई और बाजार से भंगार खरीदकर अपने कमरे के चारों कोनों में फैला दिया। सबसे छोटा राजकुमार सकारात्मक सोच वाला था। वो सोचने लगा कि मेरे पिता एक इतने बड़े राज्य के राजा हैं, अगर उन्होंने एक सिक्का दिया है ऐसी चीज खरीदने को जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए, तो जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा वास्तविकता में होगा। अपने पिता की बात को ध्यान से समझकर वो बाजार से दिए खरीद कर लाया। उसने कमरे के सभी कोनों पर रखे थे जिससे उसके कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर गया। राजा ने रात्रि को तीनों पुत्रों के कक्षों का निरीक्षण किया। राजा ने तीनों पुत्रों को पास बुलाया। राजा ने कहा कि जब मैंने सिक्का खर्च करने को कहा था तो मैंने उससे क्या खरीद सकते हैं उसका संकेत भी दिया था। मैंने कहा था कि मैं रात्रि में तुम्हारे कक्ष में आऊंगा, तुम्हारे कक्ष का कोना कोना भरा होना चाहिए, लेकिन तुम दोनों ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि तुम दोनों की सोच नकारात्मक थी कि इससे ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे छोटे भाई की सोच सकारात्मक थी, उसने समाधान पर ध्यान दिया, उसने बाजार से दिए खरीदे और अपने कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जब हम नकारात्मक सोच रहे होते हैं तो हम समस्या के आने पर समस्या को इतनी बड़ी मान लेते हैं कि समाधान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ये थी आज की कहानी और उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। आप अपना फीडबैक जरूर हमें दें और अगर आप भी कहानियां लिखते हैं तो आप अपनी मौलिक कहानियां हमें भेजें। अगर उस कहानी को हमने सही पाया तो हम उसको आवाज देके लोगों तक पहुंचाएंगे। आप अपनी कहानियां हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है radiovitasta@gmail.com या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ।
3: ਸਿਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਵਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋ
2: ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ
3: ਅਸਲੇ ਪੌਣ ਪਟਾਕੇ
2: ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰ ਮੈਨੂੰ 90.0 ਮੇ

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है एक नया सेगमेंट किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। एडिट व रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशन आरजे किरनी का। आज का विषय है सावधान समझदार बनो।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर किरणी। आज लेकर आई हूं एक नया सेगमेंट रेडियो पॉडकास्ट, जो आपको कम समय में महत्वपूर्ण अपडेट्स देगा। तो पेश है ये खास शो किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है सावधान समझदार बनो, जहां बात करें उन अजीब और अनोखे व्यवहार की जो हमें छुप छुप कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बचपन ही सीखने का समय है और हमें छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या आपके पास कोई व्यक्ति अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी हद से ज्यादा नजदीक आने की कोशिश कर रहा है? समझाना जरूरी है, क्योंकि सावधानी जरूरी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जानिए कैसे अपने बचपन की हिफाजत करें और समझदार बने। बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना अब उतना मायने नहीं रखता। बच्चों के 91% अपराधी उनके जाने पहचाने लोग ही होते हैं। बच्चों को उस अजीब व्यवहार के बारे में शिक्षित कीजिए जो उन्हें खतरे की सूचना दे सकता है। अब कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने रखती हूँ। कोई बड़ा आपसे राज रखने को कहे, बच्चे को सिखाइए कि अगर कोई बड़ा कह रहा है कि तुमने अगर किसी को पुकारा या तुम चिल्लाए तो तुम या हम दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो ये खतरे की निशानी है, तुम फौरन उस बड़े के पास से हट जाए। कोई भी आपकी फोटो खींचने को कहे, नन्हों को ये सिखाना होगा कि आपके माता पिता के मर्जी के बगैर कोई आपकी फोटो नहीं ले सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके स्कूल का कोई सीनियर है या कोई परिचित पड़ोसी, आपको उसे मना कर देना है। कोई आपको जल्दी से फैसला करने को कहे, अक्सर संदिग्ध लोग बच्चों पर अहम फैसला जल्दी करने का दबाव डालते हैं। वे नहीं चाहते कि बच्चा सही सोच की तरफ बढ़ भी पाए। अगर कोई वाकई सही व्यक्ति होगा तो मम्मी पापा से पूछने को कहेगा या खुद पूछिएगा, ये बच्चे को बताए। कोई आपसे बहुत छू छू कर बात करे, बच्चे को सिखाए कि अच्छा इंसान आपसे दूर खड़े होकर बात करेगा। अगर कोई आपको छुए और आप मना करें तो उसे आपकी बात तुरंत माननी चाहिए। अच्छे लोग आपकी मर्जी को समझेंगे, जो मना करने पर भी ना माने उससे दूर हो जाए। कोई किसी काम के लिए लालच दे, किसी राज को रखने के लिए या कोई काम करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति चॉकलेट आइसक्रीम आदि के लालच दे तो उसे बिल्कुल नहीं मानना है, ये बच्चों को जरूर बताइए। जान पहचान होने का वास्ता दे रहा हो, बच्चे को सिखाए कि अगर कोई पहचान वाला व्यक्ति कहे कि हम तो एक दूसरे को जानते हैं ना, तो डरने की क्या बात है, तो तुरंत उसे कहे कि आप घर पर मम्मी पापा के सामने बात कीजिएगा। अगर आपको खुद अजीब लग रहा हो, बच्चों को सिखाइए अगर किसी के पास आने से या छूने से आपको अजीब लग रहा हो, वो तो बड़े हैं, उनसे कैसे कुछ कहे वाली झिझक भूल जाएं, उनको फौरन मना करें और वो भी साफ शब्दों में। बड़े बच्चों से मदद करने को कहे, बच्चे से स्पष्ट कहे कि कोई बड़ा आपसे रास्ता पूछे,

0: रिश्तेदार बनिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस जानकारी को जरूर बांटिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और समझदार बनिए। नमस्कार।
1: भगवान को लगते प्यारे बच्चे मन के सच्चे।
2: आपने सुना हमारा नया सेगमेंट किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 1। आज का विषय था सावधान समझदार बनो। एडिट व रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशन आरजे किरनी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

या नाबद मतलब कश्मीरी में जैसे मिठाई कहते हैं, मीठा कहते हैं, मिश्री कहते हैं। तो ललित मिश्री को का एक मेटाफर यूज करती है, वो कहती है कि जो दुनिया की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये दुनिया की इच्छाएं आकांक्षाएं सुख जिसका हम भोग करना चाहते हैं मिठाई के समान है। और ये मिठाई की लालसा हम सबको होती है, क्योंकि मीठे की एक बार आदत लग जाए तो आदमी का मन हमेशा अतृप्त रहता है और मीठा चाहता है, क्योंकि पहले ये मीठा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये मीठा और आना शुरू कर देता है तो ये जीवन में एक बोझ के समान हो जाता है। हमें पता भी नहीं लगता ये बोझ कब बन चुका होता है, क्योंकि लालसा ने हमारी आंखें अंधी कर दी होती है, हमें दिखता ही नहीं है। हम हर चीज चाहते हैं, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले, एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज मिलनी चाहिए। तो ललित इन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, इन इच्छाओं को इस मिठास से जोड़ती है और कहती है कि ये जो इच्छाएं हैं ये बड़ा बोझ क्रिएट कर देती है हमारे ऊपर। और फिर कहती है कि देह कान होल गोम भाई क्या कि हो, मतलब फिर ये बोझा इतना भारी हो जाता है हम पर कि जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, जिस चीज के लिए मैं इस जीवन में आया हूँ, वो चीज मुड़ना शुरू हो जाती है, वो चीज उस भार के नीचे दब जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और फिर कहती है गौरसुंद वनुन रावन त्योल्प्यो, गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि तो उस दिशा की ओर चल, उस परमात्मा को खोजने चल। मुझे वो दिशा अच्छी तो लगी, लेकिन उसको करने के लिए मुझे इस दुनिया से अपने आप को खींचना है बाहर। अब दुनिया से अपने आप को खींचना बाहर किसी को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा तकलीफ देह है, ये सबके लिए बड़ा बड़ा कष्टकारी होता है। तो इसलिए फिर कहती है फलरोस खोलगोम हाई क्या की हो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं इस दिशा में जाऊं या मैं इस दिशा में रहूं, मैं छोड़ूं या पकड़े रखूं। तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है, लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 90.0 FM ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: दोस्तों, खुश आमदीद। यू आर क्लोज टू माई हार्ट। तुम मेरे दिल के करीब हो।

धीरे धीरे ये सारे मौसम बदलते रहे, पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम अभी लुप्त हो चुका है और दरियाओं की रवानी थम चुकी है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही शायद तुम लौट आओ, मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए। मोहब्बत अब बेजुबान है, खामोश साहिलों में पानी की तरह है।

ये रात है खामोश और आज की शब ये सितारे बिना चांद के तन्हाई महसूस कर रहे हैं।

शब की खामोशी को चीरती हुई तुम्हारी दर्द भरी आवाज मुझे तुम्हारे पास पास होने का एहसास कराता है। पर क्या तुम हो मेरे हमनवा हमराज? शायद इस बात का अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि तुम अक्सर गुम हो जाते हो मेरी तन्हाइयों को चीर कर, और इस खाली शब के इन अंधेरों में मैं ढूंढता हूं चांद को जो आज कहीं

बढ़ते दिलों के एहसास को महसूस करने के लिए हमारी नजदीकियां अक्सर उड़ान तो भर लेती हैं पर गहराइयों को छू नहीं पाती। शायद यहीं से जिंदगियों ने तड़पना शुरू किया है। एक सहारे की जरूरत है हमारे आने वाले कल को, क्योंकि बेपरवाह इन काफिलों में हम ही सरफिरे थे जो तुम्हारी उम्मीदों में गुमनामी की जिंदगी काट रहे हैं। यह सोचकर कि वो मेरा दामन भर देगा अपनी रहमत से, करम अपनी नवाजिश अपनी मेहर से।

कुछ उलझने पड़ी हैं शरीरा, जो थाम लेती है दामन बेवजह। बेवजह क्यों यह सूरज मेरे सफर में मेरा साथ छोड़ देता है और मैं परछाइयों के हमराह अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता हूं, यह सोचकर कि शायद मेरा यह अधूरा सफर मंजिल के साथ साथ मुझे मेरी खोई हुई पहचान वापस दिला सके।

मेरे शब्दों में तुम्हारे नाम की दीवानगी हमेशा महफूज रहती, जो तुम मेरी ढलती उम्र को अपनी पनाह में लेते, मेरे गुनाहों को अपने आंचल में छिपा लेते, मेरे दर्द को अपना दर्द समझते, मेरी परेशानी में मेरे हम कदम साथ साथ चलते चलते मेरे हमराह मेरे सफर के आखिरी पड़ाव तक, जहां से हमारे तुम्हारे बीच पन पे एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है।

दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। इजाजत, नमस्ते।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

पेश है मिले जुले गीतों का ये खास कार्यक्रम। इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। आदाब।

छूता हूँ, खुशबू को ढूंढता हूँ, पानी को पकड़ता हूँ, रूहों से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ। टिमटिमाते सितारों की करवटों में शबनमी बूंदों की रंगोली से इंद्रधनुषी बंटवारे की लकीरें खींच लेता हूँ। आसमां से नजरें मिलाता हूँ, चांद को निहारता हूँ, सुनसान राहों को तन्हा रातों में तकता रहता हूँ। चांदनी रातों में अपने ही साए से लिपट जाता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ, सच में मैं पागल हूँ। गुप अंधेरों में खुद के साथ सफर करता हूँ, भटके परिंदों की रहनुमाई करता हूँ।

अबीर हो, इंद्रधनुषी मौसमी बारिश हो, जिंदगियों में बहारों की बौछार हो, समय को ठहरने की इजाजत हो, चाहतों में चुंबक जैसी जुम्बिश हो। सांसों की गर्माहट में होंठों की कपकपाहट हो, इन कदमों की आहटों में पुनर्जन्म का एहसास हो, आशियानों में लगी आग हो, टूटे आईनों में बिखरती तस्वीरें हों, लेकिन सिर्फ तुम मेरे ख्वाबों में हो, मेरे ख्वाबों की ताबीर।

मौसम बदलते रहे पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम अभी लुप्त हो चुका है और दरियाओं की रवानी थम चुकी है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही शायद तुम लौट आओ मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए। मोहब्बत अब बेजुबां है, खामोश साहिलों में पानी की तरह है।

भर देती हैं खुशियों से दामन, अपने साथ कहीं दूर तक ले जाती हैं, गगन के उस पार अपनी मुस्कुराती दुनिया में, जहां फरिश्ते राहों में सजदा करते हैं, जहां यकायक फूलों की बारिश होती है, जहां चांद सितारे हमारे पांव छूने में गुरेज नहीं करते हैं, जहां रूह रक्स करती है और जिस्म प्यार का इजहार।

रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, आदाब।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पेश है रमेश मरहटा के काव्य संग्रह तैरते बादलों में एक शाम पर आधारित हमारा यह विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम श्री रमेश मरहटा जी को समर्पित कर रहे हैं। इसे पेश कर रहे हैं नरेश शर्मा।
5: रमेश मरहटा, एक एहसास, वो एहसास जिसे महसूस करते ही खूबसूरत फिजाओं में दिलकश मौसीकी अपने आगोश में समेट लेने को बेताब हो उठती है। लेकिन उनका आभा मंडल सौंधे सौंधे माहौल को अपनी गिरफ्त से बाहर ही नहीं आने देता। उनकी कलम की जादूगरी को एक शक्ल देने की कोशिश जहन को किसी और ही दुनिया की महक से सराबोर कर रही है। आइए महसूस करें तैरते बादलों में एक शाम। मौसीकी और शब्दों की कारीगरी का सफर अपने रेडियो हम सफर नरेश शर्मा के साथ।

0: मौसम है तुम्हारी यादों का, जब महीना था सावन का, तब तुम लौट आए थे नंगे पांव, भीगते भीगते भीगे थे कप कपाते होंठ, चेहरे की रौनक और सादगी से भरा कद एक आदम जिस्म का, लरजना लाजमी था, धड़कने उदासी में लिपटी हुई थी, शायद अपना दर्द बयां कर रही थी, वर मेरी पनाहों में जो तुम ठहरते पल भर के लिए, फिर से खिल उठता तुम्हारी यादों का मौसम, बीते मौसम की तरह।
1: वो जब याद आए

मौसम आए मौसम जाए, पर तुम कभी ना आए। तुम आगाज थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे, मील के पत्थर थे, मोहब्बत की सरहदों के निगहबान थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थे और सुबह की पुकार थे। कितने ही मौसम आए, कितने ही मौसम जाएं, क्यों नहीं कभी तुम लौट कर आए, क्यों नहीं कभी तुम लौट कर आए।

समय की इन तेज धाराओं से गुजरते गुजरते बीत गए कई युग। हर युग में समेटना चाहा तुम्हें अपनी बाहों में, छेड़ना भी चाहा तुम्हें अपने एहसास में, उतारना भी चाहा अपनी धड़कनों में, बसाना भी चाहा तुम्हें हम सफर बनाना चाहा, सजदों में बाकी उम्र बिताना चाहा। दुख की परिभाषा क्या है, तुम्हारे सुख की कल्पना करना चाहता था मगर ऐसा हो न सका, मगर ऐसा हो न सका।

तैरते बादल, बेशक परस्तिश में वक्त गुजरता, जो तुम रूबरू मुझे अपनी पहचान कराते, रिश्तों को जिताते, मेरे जज्बात को अपनी पनाहों में महफूज रखते, अपनी इबादत दुआओं में मुझे शामिल कराते। मैं जानता हूं मैंने बेइंतहा प्यार किया है तुमसे, जिसकी गवाही आसमानों में तैरते बादल हमेशा से देते आ रहे हैं।

तन्हा पत्थर। कुछ तो सपने थे और कुछ हकीकत, रास्ते वो थे पर बीच राह में हम सफर खो गए। पल भर में यहां मौसम बदलते गए और तर्क करते रहे मेरी आंखों की खामोशी। इस काले घने धुएं में तुम्हें से मिलने की जुस्तजू बरकरार रही और रात भर जलते रहे, बुझते रहे रोशनियों के चिराग। फिर धीरे धीरे मेरे तुम्हारे रास्ते सिमट गए। अब गुमनामी की इन बस्तियों में तन्हा पत्थरों को तराश कर क्या हासिल है।

ख्वाब की तरह। वो लम्हे हमारे अपने थे जब चांदनी रातों में हम सितारों की दूरियां नाप लिया करते थे, इनका दर्द समझने की कोशिश करते थे, इन्हें तुम अपने आंचल में छिपा लिया करते थे और इनसे हम कलाम हुआ करते थे। इन चांदनी रातों में हम दोनों इन सितारों को निहारते थे, हमें इनकी खामोशी का एहसास था और इनकी सिसकियां हमें महसूस हुआ करती थी, पर अब ये सब ख्वाब की तरह हैं जो हकीकत से कोसों दूर हैं।

उम्मीद कली, वो जो चाहते बांटते रहे सरेआम अपनी खुशियों को नीलाम करके, बावजूद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। वह जीने का अंदाज जानता था, दूर पतंग की डोर पकड़कर खुले आकाश में पतंग को उड़ाने का हुनर जानता था। उसकी एक मुस्कुराहट लिए अपनी मुस्कुराहट फिदा करता था, शायद ये सोचकर कि एक दिन एक नन्ही कली खेलेगी उसके आंगन में ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: तेरे दिल में सिफ्टी, मुझ मेरे दिल में सिफ्टी, जमाना है बुरा।
1: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

देश है अपना देश है अपना देश है अपना देश है आज से दब रहे थे लाज से अपना देश है आज से दब रहे थे लाज से दूसरों के राज से उनके तख्त ताज से उनके तख्त ताज से कट गया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
2: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
3: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
4: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
3: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
6: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

मैं चाहुंदा हां इदां ही तू हसदी रह, दूरों दूरों दिल मेरे विच वसदी रह, मिलके मैनू मुख तो तेरे हासा ना उड़जे, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। मक्का की बुआई का समय खत्म हो चुका, अब बेबी कॉर्न के लिए बिजाई कर सकते हैं किसान। फॉल आर्मी वर्म कीट नुकसानदायक, बुआई के बाद प्रति एकड़ 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। दाने वाले मक्का की बुआई का उपयुक्त समय अब समाप्त हो चुका है, ऐसे में किसान वर्तमान मौसम में केवल बेबी कॉर्न की खेती करें। बेबी कॉर्न उत्पादन के लिए MH4 और पूसा MH4 मेल स्टेराइल किस्मों को उपयुक्त माना गया है। विशेषज्ञों के अनुसार बेबी कॉर्न की बुआई के बाद धान की पराली 32 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खेत में समान रूप से बिछानी चाहिए। पराली मल्च के रूप में कार्य करती है, जिससे खरपतवारों का उगाव कम होता है और फसल में उनकी समस्या नियंत्रित रहती है। मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म सबसे नुकसानदायक कीटों में से एक है। इसकी समय पर पहचान के लिए बुवाई के तुरंत बाद प्रति एकड़ 5 फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। यदि पौधों की पत्तियों पर बड़े व अनियमित छेद दिखाई दे या गोब वर्ल में कीट का प्रकोप नजर आए तो तुरंत नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए। खेत की तैयारी, खेत की 4 से 5 जुताई करके 2 बार सुहागा लगाएं, ताकि खरपतवारों व ढेलों रहित अच्छी बीज शैया तैयार हो सके। बीज की मात्रा बेबी कॉर्न के लिए औसतन 12 किलोग्राम प्रति बीज एकड़ डालने से वांछित पौधों की संख्या प्राप्त की जा सकती है। बीज उपचार, रोगों व कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए बीज को पहले फफूंद नाशक और कीटनाशी से उपचारित करना चाहिए। दीमक व प्ररोह मक्खी की रोकथाम के लिए एमिडाक्लोप्रिड 70.8 SL तथा 7 मिली प्रति किलोग्राम व रोगों से बचाने के लिए थीरम 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीजोपचार के समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने, मुंह में मास्क लगाएं और हाथ में किसी प्रकार की चोट या खरोंच ना हो। लाइनों की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधों की 15 सेंटीमीटर रखें। पूर्व पश्चिम दिशा में मेड़े बनाकर बीज मेड़ों पर दक्षिण दिशा में 4 से 6 सेंटीमीटर गहरा बोएं। लाइनों की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बिजाई यदि न्यूमैटिक प्लांटर द्वारा चौड़ा खुर विधि का उपयोग करके की जाए तो मक्का का जमाव भी अधिक होता है व पानी का भी 30 से 35% बचाव होता है। खाद व उर्वरक, बेबी कॉर्न में ज्यादा पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद व रासायनिक उर्वरकों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। खेत तैयार करते समय अच्छी गली व सड़ी गोबर की खाद 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। बिजाई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और उसी आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। सामान्य दशाओं में बिजाई के समय पूरी फास्फोरस व पोटाश 52 किलोग्राम DAP व 40 किलोग्राम MOP का 1/3 नाइट्रोजन 45 किलोग्राम यूरिया डालें। सिंचाई, खेत में नमी बनाए रखने के लिए 6 से 8 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। दाने की दुधिया अवस्था व दाना सख्त होने की अवस्था में सिंचाई सुनिश्चित करें, वरना पैदावार में 15 से 20% की हानि हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा बरसात या तूफान की चेतावनी होने पर सिंचाई रोक दें। खरपतवार नियंत्रण, बेबी कॉर्न में सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए 600 ग्राम एट्राजिन 50 WP को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1 से 2 दिन बाद या खरपतवार अंकुरण से पहले छिड़काव करें। टेम्बोट्रियन 42 SC 115 मिली प्रति एकड़ की दर से बिजाई के 20 से 25 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। गर्मी में पौधों में कम खाद डालें, मल्चिंग विधि अपनाएं। पेड़ पौधों और हरी सब्जियों की पौधों की जड़ों को ठंडा रखना जरूरी। जून और जुलाई के महीनों में चलती गर्म हवाएं लू न सिर्फ इंसानों को बल्कि पेड़ पौधों और हरी सब्जियों को भी बुरी तरह झुलसा देती है। कमल सैनी DHO करनाल ने बताया कि इस मौसम में अक्सर देखा जाता है कि बागों में आम नींबू और अमरूद के छोटे फल पकने से पहले ही काले होकर गिरने लगते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में बाग सब्जियों की खेती या घर के बगिया किचन गार्डन को तपती गर्मी और लू से सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक और स्मार्ट उपाय करने चाहिए। गर्मी में पौधों में कम खाद डालनी चाहिए और किसान मल्चिंग विधि अपनाएं। मिट्टी को ढकना पौधों के लिए सुरक्षा कवच। इस मौसम में सीधी धूप पड़ने से मिट्टी की नमी बहुत खत्म हो जाती है। इससे बचने के लिए पौधों सब्जियों के मुख्य तने के चारों ओर सूखी घास पुआल गन्ने की पत्तियां या सूखे पत्तों की 3 से 4 इंच मोटी परत बिछा दें। इसे मल्चिंग कहते हैं। यह परत सूर्य की सीधी किरणों को मिट्टी तक नहीं पहुंचने देती जिससे जमीन की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और पानी की खपत भी आधी हो जाती है। सब्जियों की जड़ों को ठंडा रखने में यह विधि सबसे कारगर है। फल सब्जियां झड़ने की समस्या खत्म होगी। नींबू आम व बेल वाली सब्जियों में इस समय फल फूल झड़ने की समस्या आती है। इसका प्रभाव फसलों के कुल उत्पादन पर पड़ता है। तल केचुआ खाद पौधों के लिए सुरक्षित और हल्का टॉनिक है। स्यूडोमोनास और ट्राइकोड्रामा को पानी में मिलाकर जड़ों के पास देने से इस मौसम में लगने वाले फफूंद से बचाव होता है। बोरोन और जिंक को फलों को फटने और झड़ने से रोकने के लिए बोरोन का बहुत हल्का छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में शाम के समय करना चाहिए। हरे पर्दे की ओट और दोपहर की छांव। अपने घर की छत या बालकनी में गमलों में बागवानी की है या छोटी क्यारियों में सब्जियां उगाई हैं, तो इस मौसम में 75% वाला हरा पर्दा जरूर लगाएं। ये नेट तेज धूप को छानकर पौधों तक पहुंचाती रहती है। इससे पौधों को भोजन बनाने के लिए जरूरी रोशनी भी मिल जाती है। रस चूसने वाले बारीक कीट के बचाव के लिए नीम के तेल का पानी में घोल बनाकर साथ में हल्का सा लिक्विड सोप मिलाकर हर 10 से 15 दिनों में शाम के समय पौधों पर छिड़काव करें। जून में खेत समतल कराने का सही समय। लेजर लैंड लेवरर से बचता है पानी, पड़ती है पैदावार। सिंचाई के पानी की 25 से 30% बचत, पैदावार में 10 से 20% वृद्धि होगी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की कटाई के बाद जून में लेजर लैंड लेवलर मशीनों से खेतों को समतल कराया जाए तो खरीफ सीजन में धान मक्का कपास फसलों की बेहतर पैदावार मिल सकती है। लेजर लैंड लेवलर GPS लेजर तकनीक की मदद से खेत की ऊंची नीची भूमि को मिलीमीटर स्तर तक बराबर करता है। इससे सिंचाई का पानी पूरे खेत में समान रूप से पहुंचता है व कहीं भी जल भराव या सूखे की स्थिति नहीं बनती। समतल खेतों में 20 से 30% तक सिंचाई जल की बचत हो सकती है। उर्वरकों का उपयोग भी अधिक प्रभावी ढंग से होता है। कृषि विज्ञान केंद्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बीरवाल ने बताया कि गेहूं कटने के बाद खेत अपेक्षाकृत खाली रहते हैं, इसलिए जून में लेजर लेवलिंग कराने से मिट्टी को बैठने का समय मिल जाता है और खरीफ बुवाई के समय खेत पूरी तरह तैयार रहता है। इससे बीज अंकुरण एक समान होता है तथा फसल की वृद्धि भी संतुलित रहती है। नीदरलैंड से लेवलर के फायदे। इससे हर मौसम में सिंचाई के पानी की 25-30% बचत होती है। किसानों की फसल की पैदावार में 10-20% की वृद्धि होगी। एक एकड़ खेत को समतल करने में केवल 2-4 घंटे लगते हैं। सरकार देती है सब्सिडी। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत नीदरलैंड लेवलर पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% व लघु सीमांत महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 50% तक सब्सिडी मिलती है। पात्र किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056613010। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन। सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC/ST, आधार कार्ड, जमीन की फरद, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रुपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, तुम चु बोज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूं रेडियो वितस्ता चु पन्ने माज जेव पोछर दिन खतर वक्त वक्त तुंद खतर नई प्रोग्राम तो नव जानकारी हेत हमेश इवान। बचुस तुहुंद रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज चुस बु तुहुंद खतर कशर ब्रॉडकास्ट सेगमेंट्स मंज अक नव डल हेत आमुत। आज बोजनाओ तुह अशुर अफसान इस जन लिखमुत सानि हिंद मायानाज लेखक श्री वीरेंद्र पटवारी साहबन अत अफसानस नाव पोज अपुज। वलिव बोजव ये अफसान पोज अपुज अख लकुट अफसान अमिक लेखन वल वीरेंद्र पटवारी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने

परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: जी? अरे कौन जी बोल रहे जी?
1: मैंने जब पूछा
2: ला ला ला ला ला,
1: बोल तेरा नाम क्या
2: ला ला ला ला ला,
1: तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धम से, आई थी वो धम से, गई छम छम छम। मन्नू

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।
0: देखो

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: हम थे वो थी हम थे।

दोनों के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: आना।
1: तुम जाओ अंजू, मैं यहीं ठहरता हूँ।
0: क्यों, उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरती हो?
1: आखिर इंसान ही तो हूँ मैं।
0: अच्छा तो चलो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: की ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: সেই দালাজ মেহেল, এক হে লতা মঙ্গেশকর, এক হে রেডিও বিতস্তা, হম সফর জিন্দগি কা।
1: ও টাই দিন না জওয়ানি নাল চল দি
0: 90.0 মেগাহার্টজ পর। अब बालक एंड सी हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 11। कार्यक्रम का शीर्षक है इंतजार। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। एक आहट सी सुनाई देती है, एक परछाई सी दिखाई देती है, दिल के किसी कोने में एक आवाज उठती है, कोई है जो आने वाला है, ये शायद कोई है जो लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं होता है, कभी एक पल का होता है, कभी एक उम्र का। और इसी इंतजार के एहसास के साथ मैं हूँ किरनी, लेकर आई हूँ एक महफिल रेट्रो हिट्स की, जिसमें होंगे कुछ बीते पल, कुछ खोई हुई यादें और वो गीत जो इंतजार का एहसास दिलों तक ले जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम रेट्रो हिट्स, जिसका टाइटल है इंतजार, जहां हर सुर एक याद है और हर धुन एक कहानी। कोई तो आएगा ख्वाब सजाने, कोई तो होगा दर्द मिटाने, बस एक उम्मीद का दामन थामे हम रोज किसी का इंतजार करते हैं।

0: तेरी बातों में ऐसी बात थी कि दिल पहली दफा बेबिसा हो गया, मोहब्बत का रंग ऐसा छाया कि हर दिन एक नया ख्वाब हो गया।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार में।

आंखों ने देखा नहीं उसे मुद्दतों से, पर हर नजर जाने क्यों सिर्फ उसी की तलाश करती है। कभी भीड़ में, कभी तन्हाइयों में, क्या ये मोहब्बत है या बस एक आदत।

मोहब्बत का असल इम्तिहान तो इंतजार ही होता है, वो पल वो घड़ियां जो बस रुक सी जाती हैं, एक चेहरा जो बस यादों में जिंदा रहता है।

कुछ इंतजार कभी पूरा नहीं होते, कुछ सूरतें सिर्फ यादों में जिंदा रहती हैं, कभी एक पुरानी डायरी की तरह, कभी एक भूल गए गीत की तरह।

इसके साथ ही रेट्रो हिट्स का आज का अंक खत्म हो रहा है। मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

हमारा ये सफर यूं ही चलता रहा और गुजरती गई सदियां। पनाह गाहों में पनाह लेने की ख्वाहिश सीने में ही दब गई। तुमसे मिलना तुमसे बिछड़ना एक आदत सी बन गई। बीते लम्हे रुसवाई का रास्ता दे गए और पथरीली रेतीली राहें मंजिल का पता बता गई।

0: सफर
1: छूट गए साथी, सिमट गई जिंदगी, जज्बा मोहब्बत का टूट गया, बिखर गया हर पल अपना साया भी पराया होने लगा। जो मिले वो अचानक रूठ गए, यहां के साहिल दरियाओं से बिछड़ गए और इन दरियाओं के पत्थर पानी के लिए तरस रहे हैं। इन्हीं पानियों में कभी चांद आकाश से उतरकर डुबकी लगाया करता था, पर अब सब कुछ अलग है, भिन्न है, जब अपने ही पराए हुए

बातें ही और है तुम्हारी फरामोशी। रंग बिखर पड़े हैं पर रक्स करती हैं फिजाएं। शायद सोचा होगा कि हवाओं के रुख में बदलाव होगा, पर ये जरूरी तो नहीं कि मौसम बदलते ही तुम लौट आओगे। इन घने बादलों को चीर कर। और यह भी तो जरूरी नहीं कि दिल की बातें हों, बातों बातों में तुम

प्यारा सा गांव है पर अजनबी रास्ते हैं, किससे मुखातिब हो जाए, हर कोई एक दूसरे से अनजान है। इन फासलों के दरमियां अपने आप को भी पहचानना मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहां खुशबू है अपनेपन की, यहां मिठास है मोहब्बतों की, और दूर एक कोने में यहां दर्द भी बिकता है।

एक परी आसमां से उतरी थी, मुझे छूकर गुजर गई। अपने दुपट्टे से मेरी नींदों को चुरा ले गई। मेरे कानों में चुपके से कुछ कह गई। ये कुछ लम्हे तुम्हारे नाम हो गए, इनको संजो कर संभाल कर रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर मुझ पे एहसान जताया, नवाजिश करम, शुक्रिया।

जी आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं और अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन का सफर आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी जानकारी भी दे गया होगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको कुछ खास विषय पर जानकारी देंगे और कल के कार्यक्रमों का विवरण भी देंगे। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 4 सेकेंड। श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब समय हो चला है रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज के आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं थामने का। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के इस शांत प्रहर तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी। आज 13 जून है और हमेशा की तरह रेडियो वितस्ता सामाजिक सरोकारों और जागरूकता को आप तक पहुंचाने के अपने कर्तव्य को याद रखता है। आइए आज के इस सफर को अलविदा कहने से पहले डालते हैं आज के विशेष दिन पर एक विस्तृत नजर। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता जागरूकता दिवस। आज भारत सहित पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंजकहीनता जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। ये दिन उन लोगों के अधिकारों, उनकी गरिमा और समाज में उनकी स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है जो एल्बिनिज्म के साथ जी रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है ये स्थिति और क्या है ये बीमारी। एल्बिनिज्म या रंजकहीनता कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक दुर्लभ गैर संक्रामक और अनुवांशिक यानी जेनेटिक स्थिति है। आप आमतौर पर देखेंगे हमारे बीच कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके त्वचा का रंग या तो सफेद होता है या हल्का रंग का होता है। ये बीमारी ऐसी है जो हमारी त्वचा को अलग अलग रंग नहीं दे पाता है। इसके मुख्य कारण है, ये स्थिति तब पैदा होती है जब किसी व्यक्ति के शरीर में मेलानिन नाम के पिगमेंट यानी रंजक का निर्माण बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है। मेलानिन वही तत्व है जो हमारी त्वचा, बालों और आंखों को उनका प्राकृतिक रंग देती है। प्रभाव। मेलानिन की कमी के कारण इस स्थिति से प्रभावित लोगों की त्वचा, बाल, आंखें पूरी तरह से सफेद या बहुत हल्के रंग की होती है। स्वास्थ्य चुनौतियां। मेलानिन ना होने के कारण इनकी त्वचा सूरज की पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज के प्रति बेहद संवेदनशील होती है, जिससे इन्हें स्किन कैंसर यानी त्वचा का कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसके अलावा लगभग सभी एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों को गंभीर दृष्टिदोष यानी कमजोर नजर या आंखों से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। समाज और हमारी जिम्मेदारी, हमें क्या करना चाहिए? एल्बिनिज्म से पीड़ित लोग अक्सर समाज में अज्ञानता के कारण भेदभाव, उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं। एक जागरूक समाज होने के नाते हमारे कुछ बेहद महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, भेदभाव को खत्म करना। हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक शारीरिक स्थिति है, कोई अभिशाप या छुआछूत की बीमारी नहीं। उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा और सम्मान दें। दूसरा, सहानुभूति और सहयोग। स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों पर उनके लिए एक सुरक्षित और समावेशी यानी इंक्लूसिव माहौल तैयार करें। चिकित्सीय सहायता और सुरक्षा। सरकार और एनजीओ के माध्यम से उन्हें सनस्क्रीन, लोशन, सुरक्षात्मक चश्मे और नियमित
त्वचा जांच की सुविधाएं आसानी से मिलनी चाहिए क्योंकि वे महंगे होते हैं। आखिरी, भ्रांतियों को तोड़ना। ग्रामीण और शहरी इलाकों में फैली पुरानी भ्रांतियों और अंधविश्वास को दूर करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। याद रखें, उनकी त्वचा का रंग अलग हो सकता है लेकिन उनकी भावनाएं, उनके सपने और उनका आत्मसम्मान बिल्कुल हमारी तरह से अनमोल है। यह था आज का विषय और गंभीर विषय है, इसके बारे में आप जरूर सोचें। अगर आपको ये विषय सही लगा तो हमें अपना फीडबैक भी भेजिएगा हमारे नंबर पर जो हम अभी आपको नोट कराने जा रहे हैं। आइए आज की रात का स्वागत करते हैं वितस्ता की लहरों को समेटती हुई इन खूबसूरत विदाई शायरी पंक्तियों के साथ। हर दिन की तरह आपके लिए ला रहा हूं आज की पंक्तियां। यूं है, वितस्ता की ये लहरें रात के सन्नाटे में गुनगुनाती है। वितस्ता की ये लहरें रात के सन्नाटे में गुनगुनाती है, दिन भर के सफर की थकान थपकियां देकर सुलाती है। रंगों से परे रूह की पाकीज़गी का पैगाम देकर, रंगों से परे रूह की पाकीज़गी का पैगाम देकर ये बहती लहरें कल फिर मिलने का वादा कर जाती है। ये बहती लहरें कल फिर मिलने का वादा कर जाती है। ये थी आज की पंक्तियां आप सभी के नाम, और साथ में हम आपको कल के कार्यक्रमों का अगर विवरण दें तो विवरण इस तरीके से है कि हमारी सभा की शुरुआत होती है सुबह 5:58 पर, और सभा की शुरुआत होती है वंदे मातरम से, और उसके साथ लाते हैं हम आपके लिए एक सुविचार। 6:00 आप सुनेंगे भक्ति संगीत, और साथ में आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी, क्योंकि कल रविवार है। 7:05 पर होगा कार्यक्रम आओ गांव चलें एपिसोड 9। हम आपको लेके चलेंगे अंबाला के लंढा विलेज में, पेश करेंगे नेहा धाकड़ और आरजे सेजल। 8:30 किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट का एपिसोड 2 सोच नहीं राह नहीं। 9:30 पहलू और गीत एपिसोड 9 सावन स्पेशल पेश करेंगे आरजे किरनी, और 10:15 पर इनसे मिलिए एपिसोड 1 हमारे साथ होंगी संभव आजाद, पेश करेंगे भारत सोपोरी, और संगीत की सभा जारी रहेगी। 6:30 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम, और 7:00 होगा सरगम एपिसोड 2 पेश करेंगे आरजे किरनी, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मरहटा। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजें हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। श्रोताओं, जागरूक रहने और दूसरों को जागरूक करने का ये सिलसिला कल सुबह फिर शुरू होगा। अब वक्त हो गया आज के इस स्टेशन को विश्राम देने का। आज के पूरे प्रसारण की तकनीकी और रचनात्मक टीम ने आप तक पहुंचाया आज का प्रसारण, और साथ रहा मेरा यानी भारत सोपोरी का। अब अपने दोस्त को दीजिए अब इजाजत, और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6:00 से रात के 9:00 तक। तो कल होगी फिर मुलाकात सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।